लसानी पेस्ट टमाटर मासु छ अन्त म्याक्रोनी इटालियन छ लसानी हामी के छ वे चिज अन्त विथ थिङ्क विथ गार्लिक ब्रेड अनि सालडहरू छ अनि अब पोटो चिप्स अन्त अल्सो गार्लिक ब्रेड थी विथ थी जसमन्टी थी विथ ब्ल्याक अन्त विदाउट मिल्क अल्सो अन्त थी विथ लेमन अन्त विथ जसमन्टी Yeah, you can get everything. You can drink. Please welcome. Please. I like to see you always, please.